तो छूटै जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत दिरडाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द नरा लावाजे, जे प्रभ भावै ता महल बुलावै।

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ

ओहो अपरंपर करण जोग। दसमी नाम दान इशनान, अन दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान। सच मैल न लागे ब्रह्म पौ भागै,

एका फलोहार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवतूता ऐन सजागह कबह ना सूता जागत जाग रह।

डर जाण तख्त नवास सच मन भाण चौदस चौथे थावह लह पावह राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

समाई आप अपाय सब कीमत पाई गुरमुख हो ऐसो करे विचार सच संयम करनी है कार वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

काय परमे भूला आवै जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे तां दर सूझै।

कह कोई। साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोए। कौन डरे, डर किसका हो।

माय नानक गुरमुख वेखै हदूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर एक सेवक एक भरम पलाय आपे करे हर आप कराय एको वरतै अवर न कोय मन रोस की जय जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी दर साचे साचे विचारी थिती वार सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे तां फल पाए थिती वार सब आवह जाए गुर शब्द निश्चल सदा सच समाए थिती वार तां जां सच राते बिन नावै सब भरमह काचे मन मुख मरह मर बेगति जाहे एक ना चेत है दूजा लुवाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपाए उपावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते भेख करह भेख तारी पाव पाव भ्रम है काची सारी एथ सुख न आगै होए मन मुख मोए अपना जन्म खोए।

मुग्ध गुवार, नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाई। बलावल महला पहला, शंत दखनी

हार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर सिउ रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मो

गवाया। नित हर हर जापै राम, मेरे हर प्रभ भावै सो करै। हर रंग हर रापै राम, गन नानक सहज मलाया। हर रस हर त्रापै राम, मानस जन्म हर पाईऐ। हर रावण वीरा राम, गुरमुख मिल सोहागणी। रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया। तिन भाग मंदेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभ। नानक जन तेरा राम, गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया। मन तन रंग पीना राम, भगत वछल।

कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिवलाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुरत हर।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया पया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

राम मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन बजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाज तरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन बजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलड़ियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसे भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना तावह बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावह बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

मुख हूँ। नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं। नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही। जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक भयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

यो सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जी यो संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पाओ सरनाई राम राय, खिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवै ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग।

हम श्री गोपाल ना उच्चरह बल गये दो चार नरस नाम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रस नाम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बस नाम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हों मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिय हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवां हर खोजो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मेला।

राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्याड़े अप

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर निवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई आपे गुण गाया हर त्यावो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों दिवलाई जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आए। नानक जिन को नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द न लगो पाओ हमै रोग कमावना। हत दीर्घ बहु सुआउ, मन हट कर्म कमावनी, फिर जोनी पाए। गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे, ता नाम धन पले पाए पौड़ी। सब वडियाईयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई। जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, ता सर्ब सुख पाई है। गुरपुरा हर उपदेश दे, सब भुख लह जाई है। जिस पूर्व होवै लिखिया, सो हर गुण गाई है।

सतगुरु का दर्शन सफल है, जिहा को इच्छे तिहा फल पाई। गुरु का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाई। हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आई। सच त्याई अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाई। सचो दह दिस पसरिया, गुर कै सहज सुभाई। नानक जिने अंदर सच है, से जन छपहना किसे देश पाई। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है, जां कहो नजर करे। मानस ते देवते भए, सच्ची भगत जिस दे। हौ मैं मार मलायन, गुर कै शब्द सुचे। नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई। हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन। उन्ना अंदर हिरदै पाई, निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन। उन्ना पराया भला ना सुखाई, क्या हुआ किसे ही की चख मारी। जा सच्चे स्यों बन आई, जे गल करते पावे, सा नित नित चढ़े सवाई। सब चख चख।

फित किया है। सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंदक शाई जन नानक सच हरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्रभ बख्श करे।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहाराजे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो

अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै, करमी सतगुर भेटीऐ, ता सच नाम लिव लागै, नानक सहजे सुख होए, अंदरो भ्रम भउ भागै। महला तीजा, गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा, मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई, अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजै पाए सूते कबहू ना जागे।

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सनमुख होवे सो हर रास लए वे मुख

इस जुग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरी धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हम मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाऊ। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाऊ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाऊ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाऊ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, ता कोई किहो मंग ले। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

आई, अनक जतन कर राखी है, फिर फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया, किश किया ना नीका, एहो जियरा निर्मूल को, कौडी लाग मीका, कहो कबीर मेरे

लावल बाणी रविदास भगत के एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारद देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारनी चात्रिक दुख पावे।

पहला जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहे आसमाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सानिह फल आस सब बिरथी जाई रहाऊ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कटंब सब छड़ाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरे कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जोखिन मैं किवक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दिसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मलासा, जित दिन उनका सुहाओ होई ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटन का आसा चा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाउ, जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओह उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप वधाई, ओह कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बसे हृदय हरि मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

नाम हरि भज सदा दीवान। जो हर महल पावै गुरबचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तलवंत कुलवंत मिलखवंत, दीसह मन मेरे सब बिन सजाहे, ज्यो रंग कसुंब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगाह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत मिल पतत परवान।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइयै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइयै, मेरे मन हर जप हर नित पड़इयै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़इयै रहाउ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइयै, हर एक को बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखइयै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइयै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइयै, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धिआइयै, जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा धिआए तू तुद ले छडइयै, गोंड महला चौथा।

मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजावहु हर दर्शन शांत शरीर शका एक राग गोंड महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा फाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहो संभाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले अपने रहन को

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटे कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाऊ, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मह गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी,

नानक निस्तरिए गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिदरम हो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ ताज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वडभाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी सरन प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा कीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिए संसार वड भागी पाइए पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटहे उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन हर गुण रमत नाही जम पंथ महाबीचार पंच दूत मंथ तो सरनाए पूर्ण नाथ जंत अपने को दीजे हाथ रहाओ सिमरत शास्त्र।

गुण महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदै किसका पतन होए जिस को राखै सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे अधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिन।

सादसंग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राखै राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै

पाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागै चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावै जन तूर राग गोंड अष्टपदियां।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जा

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबहू ना डोले। गोंड नरु मरै नर काम न आवे पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो

मूंड पलोस कमर बद पोथी हमको चाबन उनको रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूदत की टेक सुन अंधली लोई बे पीर इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछै परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वा कै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरे तोई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोदे पांच पलीत है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चर कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जने ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन्न कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग निकावन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करहे पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड।

है भक्ति दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुज है हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मृगाय प्राण तजे वाको ध्यान ना जाय ऐसे रामा ऐसे हीरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाउ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखरी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी।

पे न जानो बाप बीतला बाहां दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख में सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफ है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूटला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपत सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों भूत सीतला तावै हर बाहन उहशार उड़ावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओले लाख छपाया। मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए। राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ। जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय। हर के लोग राम जन नीके, पागहीन ना सुखाए। ज्यो ज्यो राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो। हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम। मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है, सेवड भागी हृदय।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संतोहो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

जिन्नी कालम है हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख न जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतरी सगल बेयोगनी एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग न व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मित पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को सोजी नाही जो पेख है किस बाण आवे।

व्यापी पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आशा पूरी।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

जिहवा तोने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाऊ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन बचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेट है पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

नामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुआओ रहाओ पंच बजित्तर करे संतोखा सात सुरा ले चाले बाजा मान तान तज ताना पाओ ना बींगा काले फेरी फेर ना होवे कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग सूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह भिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया करता।

ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले दीठा, रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये निह काम, तन मन सी तल अग्न निवारी, अनंद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जा।

हों सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाउ। महिमा जा की गहर गंभीर,

अनक पाप ता के पानी हार ज्ञान को मया पई करतार जिसा सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राख कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन वे अंत महमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

योग आपन कर्म आपे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाउ तन तन कलत।

लागै बंद छाड़ वडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े माया के माते तै उठ चलना राज रहे हो तू संग सुपना रहाओ बाल व्यवस्था बार के अंद पर जोबन लागा दुर्गंध तृतीया व्यवस्था सिंचे माई बिरध पया छोड़ चल्यो पछताई चिरंकाल पाई दुर्लभ दे नाम बिहूनी होई खे पशु परेत मुगद ते बुरी तिसै ना बूझै जिन ए श्री सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुम्हें छडाव हो छुटकह बंद बख्श मलाव हो नानक जागे अंद राम कली महला पंजवां कर संयोग बनाई काश किस संग रहे हो याना राच प्रित पार नित सार संभार अंत की बार ऊठ सदार नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ परानी रहाओ तीरथ नाए ना उतरस मैल कर्म धर्म सब हों मैं फैल लोक पचारे गत नहीं होए नाम विहूणे चल सहरोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपै जिसे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ जित लावह तित लागह स्वामी नानक साहिब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माए ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन मेहमानी महापुरख का संग भया रहाऊ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखै सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अठ सठ तीरथ जह साध पग धरह तह बैकुंठ जह नाम उच्चरह सर्व आनंद जब दर्शन पाईऐ राम गुणा नित नित हर गाईऐ आपे घट घट रहे आप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खलाने।

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटै माया के पटल गुर का शब्द।

घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संत

जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचै सो कशु न लह, इस त्याग सत संगत करै, वड भागी नानक ओ तरै। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

कास संग रचै जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिगस

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोह।

सगल अपावना चालह संग भव जल तरिया प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हों मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ता का रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कभो न बिसर गोपाल तेरे दास की हो आतूर नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सहराचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पोता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवे, अंत नहीं हर पारा वार रहाउ, कीर्तन निर्मोल गहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाद गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिसे आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख ना

संकरा नहीं जानह पेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मन एहो बिसराम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसह जनावह तिन तू जाता।

मत सार जित हर सुमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपया गुर।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहे ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाओ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवां, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलख।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, इस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिद माहे अरा

पाक करान कतेब ते पाक नारायण नर हर दयाल रमत राम कट कट आधार वासुदेव बस्त सब ठाए लीला किस लखी ना जाए मेहर दया कर करने हार भगत बंदगी दे सिरजनहार कहो नानक गुर खोए परम एको अल्लाह पार ब्रह्म राम कली महला पंजवा कोट जन्म के बिन से पाप हर हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महाविकार तन ते सब नसे।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्शडी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न नवारी सतगुर देव, सेवक अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी लई

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रग

सिंध समायो कट के माही करनहार को किस अचरज नाही जो छूटो तो जाए पयाल जो काडे हो तो नदर निहाल पाप पुन हमरे बस नाही रसक रसक नानक गुण गाए राम कली महला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे ब्यापिया तोहे कुदम करे गाडर जो शेल चिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावह साच तना रहाउ ऊणे काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जियरे कै ताई गाफल संग न तसु आ जाई तरत तो हो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाक सिर छाने जिन दिया तिसै ना चेतै मूल मिथ्या लोभ न उतरै सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल इह मन होआ सादर वाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै।

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचे दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणे छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोलै झूठ कमावै अवरा कृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत।

बिन सह अभमान एक त्याई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहा गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावहु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजल उतरस पार राम कली महला पंजवां गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरादो साचा सोए जाकी सरन सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिनसे सब दुख सहज आनंद करहो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मटाई।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कै सिमरै पावै पद निर्वाना भई दयाल कृपाल संत जानू।

सुबा सुर मह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घट है निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार। हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाओ। कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा। दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा। जे को सत करे सो शीपै तप कर तप न होई। जे को नाउ लहे बदनाम कल के लखन एई। जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना। जा सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना। आख गुणा कल

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो धोवो तो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाव भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना। त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा। उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग। जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत। राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी। सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना। गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ। गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ। माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए। नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा। हौ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै। जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गाते अंतर पाई। अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी।

सत परूता जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी। सुन समाद सहज मन राता।

हो मैं जाए शब्द घर नहीं है रहाऊ गण गण ज्योतक कांडी कीनी पड़े सुनावे तातना चीनी सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो ना सगली चार नावे है धोवे है पूजे है सैला बिन हर राते मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचारे आप डुबे क्यों पितरा तारे कट कट ब्रह्म चीने जन कोए सतगुर मिले ता सोजी होए गणत गणिये सहसा दुख जीए गुर की सरन पवे सुख थीए कार्य अपराध सरन हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरन ना आईए ब्रह्म ना पाईए भरम भलाईए जन्म मर आईए जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहाव है दुबदा राते महल ना पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमत।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिक्षिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सही जै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, किरत पया दोष का कौ दीजै, अन ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ।

सुंदर दुंदर पास तरी जय, तुरकी सेवा राम रुवीजै, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभु ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर,

साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ भरमस ब्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई।

मन तन निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सच नाम तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजो भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाम हों मैं गर्भ जाई मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बांध को पीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत भी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका यह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख सतगुर शब्द विचारी सिंह सुरत अनाह दवाजे कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पांच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसने औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

पाखांडे औदू गुरमुख शब्द बिचारी गुरमुख जोग कमावे औदू जात सत शब्द बिचारी शब्द मरे मन मारे औदू जोग जुगत बिचारी माया मोह भवजल है अवदू शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदू बाणी भगत बिचारी एहु मन माया मोहया औदू निकसै शब्द बिचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक सरन तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

जोग जुगत एव पाए नदरियावंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग न होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रूग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना

अपना आप ना पछाण है संतोह कूड़ करह वड्याई पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गुआई जिने अंतर शब्द आप पछाण है गत मित तिन ही पाई एह मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है सत संगत मेला।

अहंकारी जिच्चर अंतर सास तिच्चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

आपे कीमत कहन ना जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पलाई। बड़ा दाता गुरमुख जाता, नगुरी अंध फिरे लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई, इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाहे हो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा, करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, बिरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बणत बनाई।

बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व थाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

कर मारी, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवां, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वपारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ, काहू बिहावै वेद अर बाद, काहू बिहावै रसना साध, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रैन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहावै

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

आन अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीना।

ज्योत तुम्हारी, तुम समरथ अकथ अगोचर, रव्या एक मरारी, कीमत कौन करे तेरी करते, प्रभ अंत न पारा वारी, नाम दान नानक वड्याई, तेरिया संत जना रे नारी, राम कली महला।

राम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारु साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया।

संतोह शब्द धरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी बेन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्यो तिखी वालो निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित्र माता पिता कटंब सहत सियो पवित्र संगत सबाइया

लीन है। कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो हो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जूऐ हारिया। जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई। मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए। अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन

करह रसना कहया कछु ना जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजहु होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाऊ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप विखे गुरमुख किसह बुझाई तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतियां रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिवला।

गुणदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके गुणदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करतै खेल रचाया जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर तेरास जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा कटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ता की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, कह अनेक रूप नाओ नव निध, तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, एहु साचा सोहिला, साचे कर गावहु, गावो ता सोहिला कर साचे, जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बजावे, एहु सच सबना का खसम है।

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणै अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधक पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा।

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगानी सारंग पाने जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणीय कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवां हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद बिचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा सर्व जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी माने बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझ पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जलने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै रैन दिनस अराधिए जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है सादी है पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना
अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना, सब इच पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक, चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिया, विपत निवारण राम, संत प्रभ विपत निवारण, तिस बिन अवर ना कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिया, जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक, हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा, जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक, रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो, एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै, जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक, धर्म अर्थ अर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। संत सगल इच मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा, आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पाव हो। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर, किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो, रुति महामूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो, गुण रंग राते तन ते जन, जिन्नी एक मन त्याया,
सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुद भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, भई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक शरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरनागति, जा का वड प्रताप। संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो, नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया, कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानक ओट तेरी, राख पूर्ण काम जियो। श्लोक शरदा लागी संग प्रीत में, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए, कर गहलीनी साजन है, जन्म जन्म के मीत, चरणहां दासी कर लई, नानक प्रभ हित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया, सावन भादवे आनंद जियो, धान उन्नम बुठे, जल तल पूरिया मकरंद जियो, प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई, हर नाम नवनिध ग्रह भरे, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, प्रिय रंग जागे नह सिधर लागे, कृपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर कंत।

नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमण राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्स पाया बिनसे माया त्रोह जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागिनी, डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका, ग्रह प्रगटे प्रभ मीत, नाद विनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बने, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माघ फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के, पवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए, नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे, से सूरे से वीर, नानक तिन बलिहार न, हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, तिलना मन ते बिसरे, तज आप सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीसरे, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आदि कौ आदेश जियो, बिनवंत नानक मया तारहु, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार सैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रि पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी

एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापे अंतर बाहर एक पछाणे यों घर महल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानू एको सृष्ट सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गह राखो अफर्यो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विभूते इब तब फिर पछताई।

भाई, अंतर शब्द साच लिवलाय। रोस न कीजै अमृत पीजै, रहन नहीं संसारे, राजे राय रंक नहीं रहना, आए जाए जुग चारे। रहन कहन ते रह न कोई, किस पह करो बेनंती, एक शब्द राम नाम निरोधर, गुरुदेव पतमती। लाज मरंती मर गई, घूंघट खोल चली, सास दीवानी बावरी, सिर ते संकट टली। प्रेम बलाई रली स्यों, मन मह शब्द आनंद, लाल रती लाली पई, गुरु

गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगमय अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिली है जान ले मलाए, गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत, काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल, कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई, जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सत

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल।

ज्ञानो बोले आपे बूझे, आपे समझे आपे सूझे, गुर का कहया अंक समावे, निर्मल सूचे साचो पावे, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहां दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवे टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपहु नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय पावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी, तिखा नवारे सोई, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तह ते तह पई, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारे जाऊं, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस संभला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

होए, टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वजोग, विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग, तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत चुगह मिले एक से तिनको फास न रंच।

मोए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुम्मण माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मोए विण नावे दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे ना

अपना तन मन आगै देऊ। अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट। गुण की मारी हो मुई शब्द

राह गोरा पेहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण झुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करियां घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दो ही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजह गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हाथ वडियाईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजे को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाई वाण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार अड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई अड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखसार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया साचो नाम अमोल हर

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौं हौं करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाय विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारू, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार जरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारू, रोस न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइयै गुरद्वारू, इहो मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम अधारू, आपे मेल मलाए करता, लागै साच प्यारू, हाटी बाटी रह निराली, रूख बिरख उद्यानी, कांद मूल आहारू खाइयै, औदू बोलै ज्ञानी, तीरथ नहाइयै सुख फल पाइयै, मैल न लागै काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै, जोग जुगत बिद साई, हाटी बाटी नींद ना आवै, पर घर चेतना डुलाई, बिन नावै मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई, हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत् बिचारू, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेब हो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइयै पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइयै, नानक बोलै गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइयै, अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हौमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, हिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारै एक हरी, साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे पवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, इहो तत् बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिलै अंधेरा जाई, नानक हौं मैं मेक समाए, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद, सहज गुफा कर जाणै साचा, नानक साचे पावै साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावहु पारी, गुरमुख खोजत भए उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, चित बिद आसा मनसा खाई,

गत मित शब्दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एक सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूजै अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजै साच सुमावे साचे सूचे एक मया झूठे आवह ठवर ना पावे दूजे आवा गौण भया आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखै।

अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रति से कैसी, जिस ते उपजे तिस ही जैसी, कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि, नानक गुरमुख मन समझाही, नौ सरस भार दसवै पूरी, तह अनहत सुन बजावह तूरी, साचै राचे देख हजूरे, घट घट साच रहिया परपूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज भाए मिलिए सुख होवै, गुरमुख जागै नींद ना सोवै, सुन शब्द अपरंपर तारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते, कबुद्ध चुआवै सो के तठाए, क्यों तत न बूझै चोटा खाए, जम दरबादे कोई न राखै, बिन शब्द नाही पत साखै, क्यों कर बूझै पावै पार, नानक मनमुख न बूझै गवार, कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार, सतगुर भेटै मुख द्वार, तत न चीनै मनमुख जल जाए, दुर्मत विछड़ चोटा खाए, माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान, साच वक्र धन पल्ले होए, आप तरे तारे पी सोए, सहज रत्ता बूझे पत होए, ताकी कीमत करे ना कोई, जह देखा तह रहे आसमाए, नानक पार परे सच पाए, सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिया भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कही है, इस कहो कवन अधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर लख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपनी मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मलाई, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाई, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकाल कला धर सोई, नदर करे शब्द घट मह वसै, विचों भरम गवाई, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाई, शब्द गुरु भव सागर तरिया, इत उत एको जाने, जेहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणे, त्रै सत अंगुल वाई औदू, सुन सच आहारु, गुरमुख बोलै तत बिरोलै, चीने अलाखे अपारु, त्रै गुण मेटै शब्द वसाई, ता मन चूकै अहंकारु।

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल न ग्रासै रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राखिया शब्द न भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

है सहसा गया बलाई ना किस बीजे ना उगवे जो बख्शे सो खाए अंब है सेती अंब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाए नानक गुरमुख।

कै जिस वसिया मन माही महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख खाए दुख विच जमे दुख मरे हूं मैं करत विहाय आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाई जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाई नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाई महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मेले सोए सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए अज्ञान का भ्रम कटी है

आप पिसाए पिसाए तै सह बात न पुछिया कबहू न लाई पाए महला तीजा नानक मेहदी कर कै रखिया सो सहो नदर करी आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाई ले इहो पिरम प्याला खसम का जय भावै तै दी पौड़ी वेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाए समाई आपे वेख विग सदा दूजा को नाही ज्यो भावै त्यो रख तू गुर शब्द बुझाई सबना तेरा जोर है ज्यो भावै तिवै चलाही तुद जेवड़ मैं नाही को किस आख सुनाई श्लोक महला तीजा परम भलाई सब जग फिरी हावी होई भाल सो सहु शांत ना देवई क्या चलै तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई है अंतर रखिया उर धार नानक घर बैठिया सहु पाया जा कृपा कीती करतार महला तीजा तंदा तावत दिन।

कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिया क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दान भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बीचारा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै माया नू फिरै तपा सदावै। परमे भूला सब तीर्थ गह ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी रात दिनस उपायन संसार की वर्तन गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई। श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम तिस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन। पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार। भरम गया तां जागिया चूका अज्ञान अंधार।

सो जाए सियाण, होर पकड़ हिंदू मुसलमान, सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत पिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बड़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवै, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टन में है भीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोले गोपी।

ये काया पखाले, काया की अगन ब्रह्म पर जाले, सुपने बिंद न दे चरना, तिस पाखंडी जरा न मरना, बोले चरपट सत स्वरूप, परम तंत मह रेखना रूप, महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म, गगन मंडल मह रूपै थम, अहन स अंतर रह ध्यान,

पौड़ी हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे, ओस पिछे डुब दे पी करना। नानक जो तिस पावे सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला, नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया। बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही अजराइल फरिश्ता। हुसी आए तई आवन जान ना सुजई, पीड़ी गली फही कूड़न खुटे नानका। ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे, किस कहन ना जापे। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया, अहंकार गुआपै।

मेरी गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दोहा रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखीजै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनीजै तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजै।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका खसम हो कुत्ते जाहे। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लए सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे ताड़ी लाइयन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहार देहु काम क्रोध दोए खेत लभ।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर बरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाएगा, किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक किन

नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बपड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, सलोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला। खसमै वै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना बगला काग ना रही सरवर।

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परै परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हूं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन।

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दा तार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै श्लोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसमै पाणिया श्लोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़े रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ
हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक धर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन कियां इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम साध ही भोगे भोग महला पंजवां मन मुखां केरी दोस्ती

ब्राह्मणे तिचर रखण गांड जित दिन किश ना हो वही तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुखे ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई चिक्कर पत्थर बंद अंधे आप ना जाननी फक्कड़ पिटन तंद।

लाई तहो लगी तू सुन सच संदेशा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्स मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवै चेता

अब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवा अंदरो अन्ना बारो अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वह चक्र बनाई।

हर हर कावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसा विच बैठा बग न बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जा हंस सभा विचार।

साहि सब सैलो कृपाल संभाली साहि साहि बिरथा कोई न जाय जे आवे तुद आहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आरा

आय अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नाइय।

होगा हरक आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याई

जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै, दरगाह पाई थाउ महला पंजवा। नानक नाम त्याई है गुरपुरा मत दे, भाणै जप तप संयम भाणै ही काढ ले। भाणै जोन पवाई है भाणै बख्श करे, भाणै दुख सुख भोगी है भाणै कर्म करे। भाणै मिट्टी साजकै भाणै जोत तरे, भाणै भोग पगाए दा भाणै मनह करे। भाणै नरक सुरग अवतारे भाणै धरन परे, भाणै ही जिस भगती लाए नानक विरले हे पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे। दिनस रहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै, तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै। खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया, तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। सलोक महला पंजवा, मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी, हौं तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवा। सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी, जेठो पौ पौलू है हबे भस पुणेंदे वतन। जा मैं सज्जन तू है पौड़ी, जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारणो। जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारनो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो, जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

ताहों सुख सखाली सुती जा गुरमिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी सबे दुख संताप जा तुद्दों भुली है जे की चन लाखे अपाव ता कहीं ना भुली है जिसनो विसरै नाउ सो निर्तन कांडी है जिसनो विसरै नाउ सो जोनी हांडी है जिस खसम ना आवे चेता तिस जम डांड दे जिस खसम ना आवी चेता रोगी से गणे जिस खसम ना आवी चेत सो खरो अहंकारिया सोई दोहेला जग जिन नाओ विसारिया सलोक महला पंजवां तैंदी बंदिश मैं कोई ना डिठा तू नानक मन भाणा कोल कमाई तिस मित्र विचोले जय मिलकंत पछाणा महला पंजवां पाव सहावे जा तौ तिर जुल दे सीस सुहावा चरनी मुख सहावा जा तौ जस गावे जियो पया तौ सरनी पौड़ी मिल नारी सत

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जां तिस पाविया सलोक महला पंजवां हव गुण तै दे नानक जियो मैं।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भाग

जुगत साई सहकाया फेर पलटी है चुलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरटी है दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाइन सटी है जिने आखी सोई करे

साली धर्म राए है देवता लै गल्लां करे दलाली सतगुरे आखै सत्या करे सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होर ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैण बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह विखालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान।

मेलो गुर का शब्द गुण की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरी कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस भाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेभूत चढ़ाव अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जाहि भलाई, जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदियले चक्र पुवंगा भेटियले रायन संगा चूकियले मोह मै आसा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक भर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बखत बख शब्द सुनाया।

फल सेवर पाका मूर्ख मुग्ध गवार हर भयो खांड रेत मह बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई कह कमीर कुल जात पा।

ले गुडी आकाश मदे परम यले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवितना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो।

दोए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाऊगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख बस।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुरु होए लखाया राम कले कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजे असमेद जग कीजे सोना गर्भ दान दीजे राम नाम सर तऊ ना पूजे छोड़ छोड़ रे।

होए कैसे, जो पार सह ना परसै, देव संसै गांठ ना छूटै, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबह ना नासी, कौरव दास सबह नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन

है हारे असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजार जरे सोन चार चरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे ढुलके चवर शंख कन गाजे दल

जप अहल सुनाम हरे, कोट कोट दुख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है अराध है, सेवक पाए खरे, किल बिख दुख गए सब नीकर, ज्यों पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दुख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दुख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवे कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे।

रे पाथर भारी हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप कृखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

पालक स्वामी हमरा कोह वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रभ धारो। हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाऊ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानु हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानु हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुग।

कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंचह हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल विख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

अपना जन आप है आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बसियो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महाबिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिटह खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ, अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीतो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना।

तेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाउ सुख दाता दुख भंजन हारा गाउ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल

रह देश हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर उपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंचै।

हर अमृत सर नावहारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, कर नारायण बोलारी।

एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

ज्ञान माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन

सब वरतै कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी। रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारी। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यो मथिया नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी। शरदा शरदा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे। नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारी। हम पापी बहु निर्गुण यारी कर कृपा गुर निस्तारी।

साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम धन पूंजी देव हो, सब तिसना भूख निवारे, पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच भूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे, शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावहो, सत संगत गुर निस्तारे, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कनहारे, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारे, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै है पर उपकारी, संतै संत मिलै मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलक्यो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तारे।

याद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रभ राया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, इन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाइय बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला।

नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरि मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गुआई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आईए सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दुई लेख पई ज्यों

काल दिन हुआ जेती घड़ी पाही तेती रस रस चोग चुगह नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चांद कुमुंदनी दूरों निवसस्त।

होकर पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किस आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

साही बिन दर्शन कैसे रहो स्नेही। मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाम सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई।

पैर मलोआ जपत रहा तेरा नाव लूण हरामी नानक लाला बख्शे हैं तुद वडे आई आद जगाद दया पत दाता तुद विन मुक्त ना।

दूजा अवर ना जाने कोई तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाई हुक्म पछाणे खसम का।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन ना होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए मार

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वडभागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अनदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाए आपे सिष्ट सब साजियन

गुनहा बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए, हर की चरनी लाग रहा विचो हो आप गुआए, मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

आनंदिन त्याय हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू अन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर दे।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपै अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरि अंगीकार करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरियो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिबलाई साधिक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जपियो ते पाई।

हरे गण गंधर बे जपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

आए सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भाग हीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए ओए जम दर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाई हर जियो आप दयाल हुए जन

मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम धन रास गुरपुरे नाम दिरडाया हर तीरक हर साबास रहाउ हर हर आप मलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुर

सुनाई प्रभु गुरमत हर हृदय सुमानी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम सुमानी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समानी बडभागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी मन मुख भाग बिहूणिया तिन दुखी रहन विहानी हम जाचक दीन प्रभ तेरिया।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

लागे हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली।

अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सी

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारी मारू महला पंजवा वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति अनक।

पतत पिए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई।

एक तिस को कबू ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वाको फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

हुक्म बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह एयानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावत फोकट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल फलानत खतरी।

मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खहड़ा परम मन का सतगुर सरणी जाए कर्म जिस को तुरहु लिखिया।

पगहते गुर की निबंद खलास आवन जान रहे हो। तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधु संग भया तो छोड़।

आओ तपसी कर कह दे ही सादी मनुआ दह दिस ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचा जकीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कह तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पैर।

अग अलापे मन नहीं हर हर गावा, हर कसोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

को मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ढकिए चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत कर्मानी हित लायो सच मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत ना जाए मटायो पास पंखी।

उठ उठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत बिस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दुख अर बहुत सजाई, तां की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन, जिस पावे तिस ही निस्तारन, अंधकूप ते काड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदाहरण तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावों संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाई संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह

अब मानो निश्चल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन तृप्त अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हार।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर।

देखा सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहि तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे देकर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उचारण।

वैदो ना वाई भैणो ना पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी असथेर जाका थान ही आवै ना जावै संगे समावै पूरन जाका काम ही भगत जना का राखन हारा संत जीव है जप प्राण अधारा करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान ही।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला

साहिब निर्मल मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाऊ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाता महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

सो भर गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

है सुख नहीं, गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं, दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही, मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे,

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देख सोई, जिन किया सो मन वसै मैं अवर ना कोई। सो साचा सलाही है साची पत होई, पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर टंडोली है एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

थी पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया।

अंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फार बनाई खिंथा, चोली माया तारी, घर घर मांगे जग प्रबुद्ध, मन अंधे पतहारी, परम फलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी, अंतर अगन ना गुर बिन बूजे, बाहर कुवर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर चीन से आपे, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, अठ सठ तीरथ परम बगूचे, क्यों मल धोपे पापे, छाणी खाक बेभूत चढ़ाई,

दिस तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म ना बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया।

पानी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

बोलो सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा तन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

बेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठे बागा पहर है कजल चर है एहो संसार तिसै की कोठी जो पैसा है सो गर्भ जर है रैयत राजे कहां सबाए दोहो अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवां अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चुकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

जन सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्रब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो

जिन्हें उपायु शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाए चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब के।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा।

भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुखत जावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखे संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आघावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपाल।

सग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विद वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता जिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुट है हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने

तो भव मन माही तिस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जो नी फिरना जो वरताए सोई पल मान है बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लाभ है तित तित लगना।

जोबन तन शोड वंजेसा करन करीम ना जातू करता तिल पीड़े ज्यों कानिया खुस खुस लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण जीता नित वखाणिया मारू सोले महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद साचा सच सोई अवर ना कोई जिन सिर जीत नहीं फुन गोई।

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बक

भये देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई आप निरालम गुरगम ज्ञाना।

राई है, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सहदाता तिल ना तमाई, पर पुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या सलाही अगम अप

चोली घर वर सहज न जाने शोहर बिन फिर नींद न पाईए अंतर अगन जले पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईए साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यो लूजै मनसा मन है समाई है माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

जुग जुग बिरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई, जीवर साइन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई हे, रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन भावे।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नाव है, ज्यों तुद भावै तिवै चलाव है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में है एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

काची मूल न बूझ साच नारी जह दूजह परम पलाई हे गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर सिउ बणत बनाई प्रभ की गत मित कोई ना पावै जे को वड्डा कहाए वडाई खावै साके साहेब तोट ना दाती सगली तिन्ह अपाई है।

जावै बूझै हुक्म सो साच समावै नानक साच मिलै मन पावै गुरमुख कार कमाई है मारू महला पहला आपे करता पुरख बिधाता जिन्हें आपे आप उपाय पछाता।

पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई है। गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमें दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अग्न बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पैंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द घर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंजे पत होई आपे बख्श लए किस भावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की चैत सो पाई है सतगुर बाजो हो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर

कर लह चल्लुहु दर्शन पावहु सहज महल्लुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यों समंदर सी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलहो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हौ मैं मार करहो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

अगन बेख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद दाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुणे अंत।

सतगुर मिले तो मनुआ टेक राम नाम बेसरन परेक हर तन नाम अमोलक देवे हर जस दरगाह प्यारा ही राम नाम साधु सरनाई सतगुर बचनी गत मित पाई नानक हर जाप।

राम जपहु अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचहु अपरंपर यूं पावहु मुक्त द्वारा ही जिस बिसरे जम जोहन लागे सब सुख जाहे दुखा पुन आगे राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस कौ सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जब

रुक्त रहा ताही, चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझ शब्द नराला, साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही, अप तेज वाये पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा, सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही, इह मन पीजह शब्द पतीजह, बिन नावे क्या टेक टकीजह, अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही, दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले, शब्द सुरत बिन आवे जावे,

कहो क्यों लखिए जिस बख्शे सह पछाता ही अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

अंत न जानी जा को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जाने जो किस करे सो अपन भाणे। लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा। जो तिस पावे सो निश्चो होवे। मनमुख आप गणाई रोवे। नाम

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप नारे ख्या मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरहों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

बुझाईंदा नदर करे पूरा गुर पीटै जम जंदार न मारे फेटै ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याईंदा आपे वरखै अमृत धारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ।

सचो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा विरला को पाई, पूरा सतगुर मिले मलाई, गुरमुख होए सो हुक्म पछाणे, माने हुक्म समाईंदा, हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दिसै जगते उपाया, हुक्मे सुर्ग मत

सुनो उपजे दास अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएंदा, गुरमुख समझै रोग ना होई, ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्त कलीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मतवाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरा भाग मलाएंदा, इस मन माया को नेहो कनेरा,

शब्द अति शीतल सहज भाई निवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी।

संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ता को धुन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार नरानम राजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसह परधाना।

क्रोध लै गर्दन मारी हमें लोभ चुकाया सच्चे थान वसे निरंकारा आप पछाणे शब्द विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार नरालम प्रभ आपे वाहे सुनाया पौ बैरागा सहज समाता हूं मैं त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्व निरंजन राया दुख पै भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाणे आपे जाने आप पछाणे सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रवतारी घट घट रब रहया बनवारी पुरख अतीत वसै नेह केवल।

निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहिथ गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुकते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया।

मुख मुक्त क्यों पाई है, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है, गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर, मुक्त भये सुख पाया, गुरमत कृष्ण गवर धन तारी, गुरमत शायर पाहन तारी, गुरमत ले हो परम पद पाई है, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मरारी, जम के फाहे काट है हर जप, अकुल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत यज्ञ निवार।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै। तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो। कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा। सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगा।

हरे अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यों चमक चंदायन देखै, एहन सजोत निरंतर पेखै, आनंद रूप

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुप

नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपियै अंत ना पाया। अंतर नाम परापत हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा। दुखट घट पौ पंजन पाईऐ, बहुड़ जन्म ना जाया। भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप जपयो सतगुर मतवा के, जम कंकर काल सेवक पगता के। उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल भारत राया। एहो पौजल जगत शब्द गुर तरीय, अंतर की दुविधा अंतर जरीय। पांच बाण ले जम को मारै, गगनंतर तनख चढ़ाया। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईए, शब्द सुरत बिन आईए जाइए। नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर कूरै भाग मलाया। निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुर गोपाला। तुन आनंद अनाहद वाजै, गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरे वो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर लाभहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै, आसा माहि निरास रही जै, संसार दुख बनासन सेवहु, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे पावे तिस वडियाई, कौन सो दूजा तिस समझाई, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हों मैं, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सो, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

कोई बूझै पौ परम शरीरों जाई हे। आपे गुरमुख आपे देवै सच्चै शब्द सतगुर सेवै जरा जम तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा लिब लागी अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी सच्चै शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई है पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई है एक भस्म लगाए फिर भेख धारी बिन शब्द हों मैं किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम भेख परमाई है एक ग्रह कटम मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई है मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इशनान दान करह नहीं बूझै, एक मनुआ मार मने स्यो लूझै, साचै शब्द रते एक रंगी, साचै शब्द मलाई है। आपे सिरजे दे वडियाई, आपे भाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेवह से जन साचे, मन मुख सेव न जान न काचे, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावै त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जमह दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो निवलाई है। जो तिस भावै सोई करसी, आप हो आ ना किस होसी ना।

सो सब को जासी दूजे भाए बादा जम फासी सतगुर राखे से गन उबरे साचे साच समाई हे आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै।

सुख पाया सहजी साच समाई ही तंदै तावत मन पया मनूरा फिर हुए कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई ही दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगणे यारी औगणे यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे।

कंचन काया गुरमुख बूझै जिस अंतर नाम नवासी है। सच्चा चौंका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा। सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है। हौं तिन बलिहारी जो सच लागे हर गुण गावे अन दिन जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया, सच्चे नाम निवासी है। ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूजै, चीने शब्द अबनासी है। काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा सादी।

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा सच तन जमया।

एहो मन पी जैही। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

सुख पाया नाए साक्याय अमृत पी जाय ही तिल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेवया शब्द विचारा संकच आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाय ही माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमती नाम ली जय ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का बहु पाव है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है सतगुर भेटै ता मुक्त पाई हर हर रसना पी जय ही मनमुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत।

निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवीजहि वेद पढ़ हर नाम ना बूझ माया कारण पढ़ पढ़ लूझ अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर त्रिजहि वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजहि आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजहि मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वसया तिथ मोह न माया सद ही साच वसया घट।

सच्चा तन खटियां कदे टोट ना आवे बूझै को विचारी सच्चा लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड भागी।

सुख सहज समाधि हर हर करतिया मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है सीजन सुखिये सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे से जन उबरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

मन तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपना आप पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

तोलह तोल, ज्यों पावै त्यों राखह रहना। गुरमुख एको जाता ही, जातुद पाणा ता सच्ची कारे लाई। अवगण छोड़ गुण माहि समाई, गुण मह एको निर्मल साचा। गुर कै शब्द पछाता ही, जह देखा तह एको सोई। दूजी दुर्मत शब्द खोई, एक समह प्रभ एक समाना। अपने रंग सद राता ही, काया कमल है कुमलाना। मनमुख शब्द ना बुझे आना, गुर प्रसादी काया खोजे। पाए जग जीवन दाता ही, कोट गही के पाप निवारे। सदा हर जीओ राखे उर तारी।

कोई गुरमुख ज्ञान सदा सलाही जुग जुगे को जाता ही मनमुख कार करे सब दुख सबाई अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई गुरमुख शब्द वसै मन साचा सद सेवे सुख दाता ही जह देखा तू सबनी थाई पूरा गुर सब सोजी पाई नामो नाम त्याई सदा सद।

भारत ने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाता ही जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग को जाता ही माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सबाया ज्योत दुपाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप पुन वरतै संसारा।

पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यों चेतना लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाण हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राता ही जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते अपारा आपे मेले गुर शब्द विचारा आपे बख्शे सच दृढ़ाई मन तन सच राता ही।

रत्न अमोल के अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर के शब्दे तोल तलाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत विस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझ, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता ही, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाही, आपे सच्चा सच वरताई, एक जन साचे आपे लाई, साचो

जन साची काते जम का पाही पन्ने घड़े सवारे साजी माया मोहे दूजे जंत पाजी मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है जम का जेवड़ा गल पाही आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्ची नाई। गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई।

मनमुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई, हुक्मे वे परवाही, गुर प्रसादी हुक्म पछाणे, तावत राखै इकत कर आणे, नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहाही, सब जग मह वरतै इको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, शब्द सलाह है से जन निर्मल, निज करवासा ताहाई, सदा भगत तेरी सरनाई, अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद भावै है त्यों त्यों राख है, गुरमुख नाम त्याहाई।

सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महाबैरागी सो सच शब्दे लाहाही दुख सुख करता तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिपतो वरतै मनमुख का क्या विसाही से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के भय की सार ना जान है भय बिन क्यों निर्भव सच पाई है।

हुक्मे कड़दा साहाही गुरमुख साचै किया अकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझै शब्द सचै सुख ताहाही गुरमुख जाता कर्म विधाता जुग चारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहाही गुरमुख नाम शब्द सलाही अगम अगोचर वे परवाही एक नाम जुग चार उधारी शब्दे नाम वसाहाही गुरमुख शांत सदा सुख पाई।

सो नाम बुझै काटे दुर्मत फाहाई गुरमुख उपजै सात समावै ना मर जम्मै ना जूनी पावै गुरमुख सदा रह रंग राती अन दिन लैंदे लाहाई गुरमुख भगत सो

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर शाह पात शाह, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

कर्म कमाए, गुर कृपा ते घट अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहाई, से जन मिले तुरे आप मलाई, साची बाणी शब्द सुहाई, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाई, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याइन, गुरमत सील सनाहाई, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसिया घट अंतर, छोड़िया माया काला हाई, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याइन सदा सुख पाइन, निश्चल राजत नाहाई, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा त्याव हो, गत मुक्त तिसै ते पाहाई, सच संयम सतगुरु द्वारे, हों मैं क्रोध शब्द निवारे, सतगुर सेव सदा सुख पाई है, सील संतोख सब ताहाई, हों मैं मोह उपजै संसारा, सब जग बिनसै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिल वाजा वाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला, बिन शब्द है कार्य के हाई, खिन मह हसै खिन मह रोवै, दूजी

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सियों सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माहि समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर धावे है, मन मुख अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

ते बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सरनावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाए जां तिस भावै तां मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाई, मन ही मन समाईंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाईंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेख थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेख पाईंदा। गुरमुख सचो सच कमावे।

खबर न पाई अंत गया पछताईंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाईंदा मारू महला तीजा आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ समाव है तू आपे मेल मलाईंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

करता ज्यो भावे तिवै चलाईंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत ना पछाने आपे करे कराई करता आपे परम पलाईंदा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा। बाजी गर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा। बाजह बाजे तुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा। कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा। करता करे सो निश्चौ होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे। गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

क्यों सुख पाई है, बिन नावे दुख पाईंदा, आप करी न आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई,

गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवे सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वासना हुई काम क्रोध जले सब कोई।

हट नाली सतगुर दिखाए अंतर नाली नावे काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारी है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चा।

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वडियाई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे, जो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरा भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चा सुख पाएंदा, किन सुख पाया जो तुद पाए, पूरे भाग

सुगै गुर कृपा ते मन तन पीजै रसना नाम त्याए रस पीजै रस ही ते रस पाएंदा महलै अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मलाएंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावै मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मलाएंदा, हर चेत है तिन बले हार है जाऊं, गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएंदा, हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए, साचे नाम समाएंदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदनी नदर मलाएंदा, वड्डे भाग इहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसै बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे पाए, एह वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिसै

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर

रस लह हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

कर्म त्याया जात सत संजम जे सच कमावे एह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस बिख मह अमृत प्राप्त होवे हर जीओ मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मै चुकै ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हम मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चै ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई।

मन पाई, मन तन सच्चे भगती राता, सच्चे सिहो चित लाया। हउ मैं विच सद जलै शरीरा, कर्म होवै भेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाई, सतगुर ते सुख पाया।

दुख पाया। आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी। गुर के शब्द मरे मन मारी, हों मैं जाहि समाया। आवण जाने परज बिगोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई। अंतर जोत शब्द सुख वसिया, ज्योति जोत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह कायो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवह शब्द प्यारा। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माही समाया। घर अंदर को घर पाई, गुर कै शब्द सहज सुपाई। उथे सोग वजोग ना व्यापै, सहजे सहज समाया।

नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत होए जे गुरमुख रह शरणाई गुरमुख प्रीत सदा है साची।

अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरनी चित लाई है। जिस भावै किसी

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख बखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वह प्राणी है जा को राख हर राखन हारा ताको कोई ना साख।

आवै जावै जिनका पख करह तू स्वामी इनकी ऊपर गल तू दयानी हे हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेवया तिन सुख पाया बिन सेवा पछो तानी हे तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसाणी हे मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कला उपाय तरी दिन धरना गगन रहाया हुक्मे चरना अगन उपाय ईंधन मैं बांदी सो प्रभ राखै पाई हे जी जंत को रिजक संभाहि करण कारण समरथ अपाहि।

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप भतीजा है। तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज घर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सब सह जंत लोए, टोट न आवे पूर भंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचे हैं सिद्ध साधक बनवासी, जाचे हैं जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंगे अपारा, खिन मह थापयो थापन हारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने।

जिस चीते आवह तिस पौ केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरै लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरै नाही सद सद ही जीवै, अमर भया बनासी थीवै। ना को आवै ना को जावै, गुर दूर किया परमी जाहे। पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माहे समाणी। चढ़ै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहे। बारह कंचन सुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवै मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यानाई। गुर मिलै सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलै नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरै, नाम अमृत पी पानाही। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थानाही। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन भाणे। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुरबानाही। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई। इस पौड़ी ते

पदार्थ लहिए, जिसे आप पलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा, हर कसोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो

प्रभ भी परवाह काठ सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझे सो सेवक कही है बुरा भला दुए समसर सही है हउ मैं जाए ता एको बूझे सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यो पिता पूत लडाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लए मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा तू आपे करता कारण करना श्रिष्ट उपाय धरी सब धरना जन नानक शरण पया हर द्वारे हर पावे लाज रखा।

स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांच जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापै मंगना सरवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिट है कमाते अब गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवे पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरिये संत सांग मिल सागर तरिये अर्चा बंदन हर समत निवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मन तन अर्प धरी हर आग्या जन्म जन्म का सोया जागै जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर टोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाई है सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद माते अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुमह करायो सरल सहाई संत है तना जाचक जाचै तुमह अराधे पतत पावन पूर्ण प्रभ साधे एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठे रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना।

का कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाए ता जग मह आई जो तुझ पाणा से कर्म कमाई तुझ ते बाहर किशु न हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए इहां हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बार कथारे ज्यो खलावे है त्यों खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही को कास एक ही को राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावह आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाए समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवे जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मत अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किसी ही बुते जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मधसूदन दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तहारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साकों गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश पूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा।
निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, देन सुनत सब मोहैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुख पणी, सारंग धर भगवान बीठला, मैं गणत न आवै सरबंगा, निह कंटक निह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्तर थान जिस है अपगा, पतत पावन दुख पै पंजन, हंकार निवारण है पव खंडन, भगति तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा, निरंकार अशल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो, सो मिले

चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सहस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया तै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राखो साध संतन कह संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पंज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना गिल करे आओ तो वह मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओह सगल कटा का मालका चरण कमल सरन आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भो नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका किसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म को मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोहर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ता को लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ बडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना, जिस रूप नारेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है तिसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूपते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

सहज वनस्पत फूल फल भंवर वसै भय खंड नानक तरवर एक है एको फूल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिउ से सूरे परधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग भवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देऊ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोय ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोय सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होय नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड़ियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जाव है हत क्रोध स्यों लूज दे।

इत तन पाया भुख लखी सुख वस्या मन आई जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आई मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदार है भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आई सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय महला तीजा जिने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो तिस बिन अवर ना कोई खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हम मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भय से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जय कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाऊ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पायन खोटिया नाही थाऊ सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाऊ अमृत का रासे आया मन वसया ना हो सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जां शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम भव गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराए नानक सोहं हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हम मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसै अगे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोए किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापां दहै हर आवण जाना चुकै
जन्म ना जाहि मर, सच नाम आधार सोग ना मोहे जर, नानक नाम निदान मन मह सांझ धर। सलोक महला पंजवां, माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम, सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम। महला पंजवां, माया साथ ना चलै चल पटावह अंध, गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी। भाणै हुक्म मनायुन भाणै सुख पाया, भाणै सतगुर मेलियुन भाणै सच त्याया, भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया। सलोक महला तीजा, जिनको अंदर ज्ञान नहीं भै की नाही बिंद, नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा, मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार, सो ब्राह्मण भला आखी जे बूझ ब्रह्म विचार। हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार, आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार। अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार, होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार। अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर, नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा। जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रच्चा। गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा, ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नच्चा। शुद्ध मारू वार महला पंजवां, दखणे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार, नैण मिंजे तरस दे कद पसी दीदार। महला पंजवां, नीहो मिंजा तौ नाल ब्याह नेह कुड़ावे देख, कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवां, उठी झालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार, काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस शार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया, गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया। हर आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया, ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया। नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सुवारिया, वेकी जंत उपाई अंतर कल तारिया। हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया, तू जाने है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया। दखणे महला पंजवां, जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़, जियो महिंजा तौ मोहिया कद पसी जानी तोहे। महला पंजवां, दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे, कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे। महला पंजवां, दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हमै रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन।
तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुद आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवां जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवां हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवां सेज वछाई कंत कु किया हब शिंगार इत्ती मांजना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरतह आप कुदरत देखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मै प्री महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जोई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुला संधि वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यो आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे छिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवा भोरे भोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अवनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जलियो पाहि जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहि महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरियां पकाइया पाइया थालै माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया
एक मंदर पांच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोहै कीतियो शिव सख्त वरताइया शिव अग्गै शक्ति हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाह कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहावार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जान ने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारिया जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणी वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे किरी दिखंदो ता जीव सा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण बहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै तिस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जने की जे वड़ा हर परतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महिंजी आस महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव पावे आए जो बैठे से फाथिया उबरे भाग मथाए महला पंजवा दिता हब मजाए खाली कोई ना जानिया तै सखी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हौं ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ भावै प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवै जावै सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावै प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावै अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी कौ महल बुलावै प्रभ देखदिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवै सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावै हौ निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवै दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंत ना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग माणही महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यो क्यों मन रूसी है जिस है हमारी किंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै
ਮਨ ਤਨ ਅਤ ਗੁਲਾਲ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਆਲੂਦਿਆਂ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਪਵੜੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਸੇ ਤੁਦ ਮਾਰ ਨਿਵਾੜਾ। ਗੁਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਜਿੱਤਾ ਪਾਵਾੜਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਦਾ, ਵੱਡਾ ਆਖਾੜਾ। ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਓ, ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ। ਜਿਤ ਲਾਇਨ ਤਿੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਹਿ ਖਿੰਚੋ ਤਾੜਾ। ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ, ਗੁਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਭਾਈ ਰਹੋ, ਹਰ ਵਸ ਦਾ ਨੇੜਾ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਲਹਾਉ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਜ ਰੰਘਾਵਲਾ, ਪਿਰੀ ਤਿਹਿੰਜਾ ਨਾਉ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਵਕਾਰ, ਇਹ ਹੱਬੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰ। ਖਾਕ ਲੁਣੇਂਦਾ ਤਨ ਕੇ, ਜੋ ਰੱਤੇ ਦੀਦਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਆ ਤੱਕ ਹੈ ਵਿਆਪਾਸ, ਕਰ ਹੀ ਅੜੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ। ਥੀਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ, ਜਿਤ ਲੱਭੀ ਸੁਖ ਦਾ ਤਾਰ। ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਧਰਮ ਤੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ, ਇਹੋ ਪਾਪੀ ਮੂਲ ਨਾ ਤੱਗੈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਗੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਛੁੱਟਈ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਤ ਸੰਗੈ। ਟਿਚਰ ਥਾਹ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਭੰਗੈ। ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਸ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ ਅਪੱਗੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੈ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੋ ਹਬ ਜਾਏ ਸੋ ਮੀਰਾ ਮੇਰਨ ਸਿਰ। ਹੱਠ ਮੰਜਾਹੂ ਸੋ ਧਣੀ, ਚੌਂਦੋ ਮੁਖ ਅਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਣਕੂ ਮੋਹੇ ਮਾਉ, ਦਿਨਾ ਧਣੀ ਅਪਾਏ। ਹਿਆਉ ਮਹਿੰਜਾ ਠੰਡੜਾ, ਮੁਖ ਹੋ ਸੱਚ ਅਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

पौड़ी। मन लो चै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया, मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया, मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया। मन अर्प्य हो हौ मैं तज हो इत पंत जलाइया, नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया। सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया, तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया। रखने महला पंजवा मूथियां तख्त प्री महिंजे पातशाह, पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो। महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावन थी वितरा, जान मठाई इख बे पीड़े ना हुटे। महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी, सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणे पौड़ी। अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं, खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिय भेखं। वर्त करह चंद्रायणा से कित ना लेखं, वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं। तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं, भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं। भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं, तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं। दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी, कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी। महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा, प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया। महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव, नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी। बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी, इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी। मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी, फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी। चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी, विचरदे फिर है संसार मह हर जी हो कामी। कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी, जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी। दखणे महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोई, नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो। महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो, तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया। महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा, मूह तन प्रेम अथाह पसन को सच्चा धनी पौड़ी। निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा, आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा। बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा, अंदरों हो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा। वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चै पातशाह देख तुर कर मचा। जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा, हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए, जन्म मरण मले उतरै सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया, नानक सफल जनम जय कट बुट्ठा सच तनी। महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी, नानक से अखणियां बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी। जिन जन गुरमुख सेवया
तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओ न हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्लै होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुतने हों खनिए महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निरासा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरियोद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्स समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारे दड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाऊ सुनंदो मां पेरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो हरियो थियो स महला पंजवा मेरी मेरी क्या करह पुत्र कलत्र स्नेह
नानक नाम विहूणिया निमुण आंदी देह पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हत्था अकाल मूर्त हृदय त्याएंदा दिन रहन जपंथा मैं छड़िया सगल अपायणु प्रवासै गुर समरथा गुर बख्शिया नाम निधान सबो दुख लथा भुग हो पुंच हो भाई हो पल्लै नाम अगथा नाम दान इशनान दिड़ सदा करहु गुर कथा सहज भया प्रभु पाया जम का पहो लथा सलोक दखने महला पंजवां लगड़िया पिरियन पे खंडिया ना तिपिया हब मजाहू सो तनी ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवां कथनिया संतहां ते सुखाऊ पंदिया नानक लदनिया तिन्हा जिन्ना भाग मथाड़े महला पंजवां डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतियां पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं कर दयालक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुहि मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपे उन इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक डखने महला पंजवां नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़ै ओए मुया ना जाही छोड़ महला पंजवां नानक बिजलिया चमकन गुरन घटा अतकालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सुहंदिया महला पंजवां जल फल नीर भरे सीतल पवन चलार दे सेजनिया सोएन हीरे लाल जड़ंदिया सुपार कपड़ भोग नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता है जो किया सोई है करना जे सौ तावह प्राणिया पावह तुर लहना बिन कर्मा किशु ना लबई जे फिर है सब तरना गुरमिल पाओ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म ना मरना हे आए कमाए ते आया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस भौजल तरना सलोक महला पंजवां।

जिन्ना महबत एक से हो ते मानस प्रधान महला पंजवा। जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवै पीर, भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवै नीर पौड़ी। कीमत कहण ना जाइए सच साह अडोलै, सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै। पन्नण करण समरत है ओपत सब परलै, करण कारण समरत है घट घट सब बोलै। रिजक समाहे सब से क्या मानस डोलै, गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोलै। सोई कम कमावना किया तुर मोलै, तुदहो बार किस नहीं नानक गुण बोलै। राग मारू बाणी कबीर जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडिया कवन कमत तुम लागे, बूढ़ हो गे परवार सकल सिउ। राम ना जपो अपागे रहाओ, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। जी बद हो सो धर्म कर थाप हो, अधर्म कहो कत पाई। आपस को मुनवर कर थाप हो, का को कहो कसाई। मन के अंधे आप ना बूझो, काहे बुझावो पाई। माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिथा जाई। नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई। कह कबीर रामै राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पहाई। बनह बसे क्यों पाईए जौलो मनहु ना तजह बेकार। जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार। सार सुख पाईए रामा रंग रवहो आत्मै राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास। मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास। अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान। ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान। कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए। अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए। रिद सिद्ध जा को

ते पाया राम ते भवह न बारे बार रहाऊ। झूठा जग डहके घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न भई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुद्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावहंगी। सुन है सुन मिलिया समंदरसी पवन रूप होए जावहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे आवन जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बुझ समावहंगे रहाउ। जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चुकावहंगे। दर्शन छोड़ भये समंदरसी एको नाम त्यावहंगे। जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमावहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समावहंगे। जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक होए रहो सगल में है अब कैसे परमाव हो। राम मोह को तार कहां ले जई है सो दो मुक्त कहां देओ कैसी। कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तबे लग कही है जब लग तत न जानिया। अब तो बिमल भये घट ही मह कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन। काहे कीजत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे। तह हर को नाम छडावन रहाओ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन। कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना। नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना। बाबा अब ना बसो ए गांव करी करी का लेखा मांगे। कायत के तू नाव रहाओ तर्म राय जब लेखा मांगे। बाकी निकसी पहारी पंच किरसानवा भाग गए। लह बांधे हो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को।

पर साध अनपहु किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपहु होए बना हम्बे सहो हदूर देखे ता पहु पवे बैरागी अड़े हुक्मै बूझे ता निरपो होए बना हम्बे हर पाखंड ना कीजे बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

मूर्ख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबाल बाल तोड़िया, अचल चल थपिया, अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिंह।

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै,

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर तरे रहाओ। जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही तरे, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तनोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सबे सरे। मारू सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जाकीरे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नव निध कर तल तांकै। हर हर हर ना जपस रसना, अवर सब छाड बचन रचना रहाउ। नाना ख्यान प्राण बेद बिद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहियो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाद अपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरन पै भागी।

पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा, देह सो तू भला, हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना जीवा, प्रिय बाज दहेली कोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सकर्मा, नानक पंथ निहाले सा धन, तू सुन आत्म रामा, बाबीहा प्रियो बोले को किल बाणिया, सा धन सब रस चोले अंक समाणिया, हर अंक समाणी जा प्रभ पाणी, सा सुहागण नारी, नव कर थाप महल कर ऊंचो, निज कर वास मरारी, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबासुर रंग रावे, नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा, कोकिल शब्द सुहावे, तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रवतर वन्ने, घड़ी ना बीसरै, क्यों घड़ी बिसारी हौ बलिहारी, हौ जीवा गुण गाई, ना कोई मेरा हौ किस केरा, हर बिन रहन ना जाए, ओट गही हर चरण निवासी, भये पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट धीरग सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा, बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुभाए, हर सिओ प्रीत बणी, हर मंदर आवे जा प्रभ पावे, तन उभी गुण सारी, घर घर कंत रवै सुहागण, हौ क्यों कंत वसारी, उन्नव घन छाए बरस सुपाए, मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसै अमृत बाणी, कर कृपा घर आवे, चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी, बन फूले मंज भार, मैं फिर घर बहुड़ै, फिर घर नहीं आवे, तन क्यों सुख पावे, बिरह विरोध तन सीजै, कोकिल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजै, पवर पवंता फूली डाली, क्यों जीवा मरमाए, नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वार घर तन पाए, वैसाख भला साखा वीस करी, तन देखै हर द्वार, आवुह दया करी, कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड न मोलो, कीमत कौन करे तुद पावा, देख दिखावे ढोलो, दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत शब्द मन माना, माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरै, थल तप है सर भार, सा तन बिनो करै।

पूछ चलो गुरे अपने, जह प्रभु तह ही जाइए। असन आओ पिरा सातन चूर मुई, ता मिलिया प्रभ मेले दूजे पाए खुई। झूठ विगुत्ती ता पिर मुत्ती, कुका कहा से फुले। अगे काम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले। दह दिस साख हरी हरियावल, सहज पक्के सो मीठा। नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर पए बसीठा। कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बले तत जलाया। दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, तन अमा है सरसी। अवगुण मारी मरे ना सीजै, गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज कर बैठे, अजहो तनाड़ी आसा। नानक मिलो हो कपट दर खुल हो, एक घड़ी खट मासा। मगर माहो भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे। मैं फिर निश्चल पावे, निश्चल चतुर सुजान बधाता। चंचल जगत सवाया, ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे। प्रभ पाणे ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन। राम नाम दुख भागै, नानक सा तन नाह प्यारी। अब भगती पिर आगै, पोखत खार पड़ै। वन तृण रस सुख है, आवत की नाही। मन तन वसह मुखे, मन तन रव रहे आ जग जीवन। गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज। कट कट जोत समाणी, दर्शन देहो दया पत दाते। गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया। हर सिओ प्रीत स्नेहो, माग पनीत पई। तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले। गुण गह अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके। सुन प्रभ बंके, तुद पावा सर नावा। गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता। नानक माग महारास हर जप, अठ सठ तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रहस पया आप गुआया। मन मोह चुकाया जा किस फाया, कर कृपा कर आऊ। बहुते वेश करी पिर बाजू, महली लहा ना थाऊ। हार डोर रस पाट पटंबर, पिर लोड़ी सिंगारी। नानक मेल लई गुरे अपने, घर वर पाया नारी। दे दस महारुत्ती थिती वार भले, घड़ी मूर्त पल साची। आए सहज मिले, प्रभ मिले प्यारे कारज सारे। करता सब बिद जाने, जिन शिंगारी तिसह प्यारी। मेल पया रंग माने, कर सेज सुहावी जा फिर रावी। गुरमुख मस्तक भागो, नानक ऐन सरावै प्रीतम। हर वार थिर सुहागो। तुखारी महला पहला, पहले पहरे नैन सलो नड़िए।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूजै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया जाग अचेती राम, वखर राख मुइये खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारे।

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया तावत पंच रही।

चूकी अबमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

होई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फरमाया पसमै पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज घर वसे अड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कही है क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिला विछुनी तन मन आगे राख नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाख महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ न

रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवरना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा तारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तारह तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे तिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पा।

नरारे नानक ज्योति ज्योत समाणी जा मिलिया अत प्यारे सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना अमर अजोनी।

साचै राचा गुरमुख तरिये तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अयाणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणी किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिये जम डर मरिये जम का पंथ देहला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधिया इन विद छूटे गुरमुख।

गुण गाए राम रसाए रसिय है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विटो हों।

अन दिन गुर गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड निस्तारिए राम, हम मूड मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करहो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सत गुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश, ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोलह, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अरादया, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पहो बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरियाप, ज्यों तू चलावे प्यारे हो तिवें चलना, हमरे हाथ किस नाही, जां तू मेलह ता हों आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करयो हो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हर आप, ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अरादिया, तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापिया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपिया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिए रखण हार, हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बणी, तू जल तल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धणी, तू थान थरंतर हर एक हर एको एक रविया,
वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्याव सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एको एक रवया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसका मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिस कह जिस अंतर भव भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार ना उतरिया कोई भवो भावो प्रीत नानक किसह लागे जिस तू अपनी कृपा करहे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी हर पाया प्रभ अवनासी हर आप करतै पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बणी खिन खिन निमुख विखा हर हर भगत बणी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लए सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करहें क्या किस पास मांग है सब

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद।

गुवाया कीर्तन प्राण नित पुन्न होवै गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

किन साध संग मन जिता, कहो नानक जियड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, सतगुर ताक लिया, मोहे पापी पड़दा, ताकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाती, अवनासी अवगत स्वामी, पूर्ण पुरख बिधाते, उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का।

देख गऊ सुख मान है, त्यों नानक हर गल लावी ऐरे। केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय हर।

राम रम हो रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी त्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखद मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत बानी केदारा मोहल्ला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

साध संग मन लावहु, ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुर बचनी, अपना दर्श दिखावहु, सब की रेन होए मन मेरा, अहम बुद्ध तजावहु, अपनी भगत देहे दयाला, वडभागी नानक हर पावहु, किदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकारथ जात, ताज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाउ, धन जोबन संपै सुख भोगवै, सांगना निबहत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रम छाया रंग रात, मान मोह महा मद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गह लेहो दास नानक कहो, प्रभ जियो हुए सहात, केदारा महला पंजवा, हर बिन कोए ना चाल साथ, दीना नाथ करुणा पत स्वामी, अनाथा के नाथ रहाउ, सुत संपत बिखिया रस भुगवत, नह

मन समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बाछत मिले लिखत धुर माथ किदारा महला पंजवां घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब एह प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध धरी केदारा मोहल्ला पंजवा प्रीतम बसत रिद मह खोर परम पीत नवार ठाकुर गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरथ नानक

रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से बहु

मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दुख व्यापह कली रहाउ। गुर बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन बिखै अग्न ना जली गह पुजा लीनो दास अपनो जोत ज्योति रली प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचै कोट शांत आनंद पूरन जलत छाती बुझै रहाउ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचै रेन जन की लगी मस्तक अनक तीर्थ सुचै चरण कमल ध्यान पीतर कट कटै स्वामी सुजै। सरन देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजै।

पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्स बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदिया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारी निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारी नहीं दोख बिचारी पूर्ण सुख सारी पावन बिरद बखानिया भगत वश्यल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारी कर गह लीने नानक दास अपने।

मन समझै है गुण गाई, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया, ते विरले संसारा, नानक साहिब भरपुर लीना, सात शब्द निसता।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पय बहरे, मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ, जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाई, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरो महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी रहाउ, ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर तंदा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, भैरो महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावे, आप मार

महला पहला हृदय नाम सर्ब धन धारण गुर प्रसादी पाई अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चित लाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज सेती घर जाइए रहाउ परम भेद पौ कबहु ना छूटस आवत जात ना जानी बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मुए बिन पानी धंधा करत सगली पत खोवस परम ना मिट सगवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही अंधले धंध पसारा अकोल निरंजन।

रहाउ। उस्तत निंदा करे क्या कोई, जाय आपे वरतै इको सोई। गुर परसादी पिरम कसाई, मिलोगी दयाल पांच शब्द वजाई। भणत नानक करे क्या कोई,

कोई खोजो हो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई, रहाओ मूल मोह कर करतै जगते पाया, ममता लाए भरम भुलाया, इस मन ते सब पिंड पराणा, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै, मन का सुभाव सदा बैरागी, सब मह वसै अतीत अनरागी, कहत नानक जो जाने पियू

तीजा कल युग में है राम नाम उरतार, बिन नामे माथे पावे शार। राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाउ। राम नाम जन पालह सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए। हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान। सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरो महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ। तन मन खोज करे मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया त्यों लोए। कल युग में हर जियो एक, होर रुत ना काई। नानक गुरमुख हिरदय राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई। मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई। हौ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा। सिमरत शास्त्र पढ़ह मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई। त्रै गुण सबे रोग व्या

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा इको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्राप्त।

भूत मलाय सो प्रभ सात्या सद ही सात्या सात्या सब अकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा। भैरव महला तीजा कल मह प्रेत जिन्नी राम ना पछाता सतयुग परमहंस बीचारी द्वापर त्रेतै मानस वरतै विरलै होमै मारी कल मह राम नाम वडियाई।

सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया मान। जो किस कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए ले गुर शब्दी विचार। गुर पूरे ते सोजी पवे फिर मरे ना वारो वार। मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया। सब इच्छ पजामन हार रहाउ सब मह इको रव रहिया। गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ। अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई। भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई। मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा। गुर शब्दे भवजल तरना रहा पेख करे बहुत चित डोले। अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए। अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय। मनमुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया। हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै।

सब ना माही, तुझते बाहर कोई नाही, हर सुख दाता मेरे मन जाप, हौ तुद सलाही, तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ, जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई, जिस कौ तुम हर राखिया पावे, तिस कह नेड़ कोई ना जावे, तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर, भैरू महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार, मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार, मद सूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु, गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरू महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्स देख मन बिगसै, खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ, तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया पनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी, ते नर निंदक शोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी, हर आप बुलावे आपे बोले, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी, हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी, भैरू महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन पीना, तिन हम श्रेवह नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गनने रहाउ, गुरसिख हर बोलो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख घने, धन सो वंश धन सो पिता, धन सो माता जिन जन जने, जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने, हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरनी, नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवने, भैरू महला पंजवां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सगली थीत पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी, परम भूले नर करत कचराएन, जन्म मरण तेरैत नारायण रहाव, कर पंजीर खवायो चोर, ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर, सगल पराद देहे लो रोनी, सो मुख जलो

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाव रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरो महला पंजवां कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पांख गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरों महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यास पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

पर ग्रह जाई दरबे रह मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लीलाट।

आऊ जिन सेवया निरपहो सुखदाता तिन पहो दूर किया एक प्राता जो तू करह सोई फुन होए मारे न राखे दूजा कोए क्या तू सोचे है मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किस जान है सिरजनहार जिसे ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सुवार तिसका राखा एको सोए जन नानक अपड़ ना साके कोई पहरों महला पंजवा तौ कड़िया जे होवे बाहर तौ कड़िया जे विसरे नरहर तौ कड़िया जे दूजा भाय क्या कड़िया जा रहया समाय माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामे भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ तौ कड़िया जे दूजा करता तौ कड़िया जे अन्याय को मरता तौ कड़िया जे किस जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने तौ कड़िया जे पूर रिंजाने गुर कहया जो हुए सब प्रभते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा ज्यो भावे त्यो करह निबेरा दुतिया नास्त एक रहया समाए राखो पैज नानक सरनाई पहरू महला पंजवां।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहां को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडत बिन बूझे कहा मन ठहराना नाम बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हौ त्याग कहा को त्यागी बिन बस पंच कहा मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

फिर फिर जोनी परमै रोग बंद रहन रती ना पावै बिन सतगुरु रोग कतह ना जावै पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहां पकड़ रोग हो काद लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणे चीत आवे ता चूकी काणे चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अभनासी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरू महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरू महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरू महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद, जा को प्रगट भये गोपाल, ताकै दर्शन सदा निहाल, सर्ब गुणा ताकै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन सीतल हर हर जपना।

आवे बेसवा भजत किस नह शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हार राज रहिया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाई गड़बड़ करे कौडी रंग लाई अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगा जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया।

आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

अणहुंडा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजे पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारे वेद अरनाद।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मटावो प्रभ सोग, न थावे को तुम थान बैठावो, दास अपने को भगती लावो, न माने को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसै, जाने अपने कै हर मन बसै, पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान, तत ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरो महला पंजवा, संत मंडल मह हर मन वसै, संत मंडल मह दुर्त सब नसै, संत

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए,

पुत्र गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना।

नाम औखद मन पीतर सारी गुर भेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

आई परवान सफल हुई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

आवण जाण रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए। बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

मन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतर है दुख काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरो महला पंजवा गुरसो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लई दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिन मह बिन स्यो महा परेत आठ पहर हर हर

रोग सब किस तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुरे अगम अपार निर्मल सोभा आचर्ज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंत।

पावन सब कीने राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवां नाम लैत किस बिघन ना लागै नाम सुनत जम दूर हो भागै नाम लैत सब दुखा नास नाम जपत हर चरण निवास निर्बिघन भगत भज हर हर नाउ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

ਭੇਦ ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾਤੀ ਸਭ ਵੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ।

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती होए पनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अवमान। ऐसे संत पीतह वड भागी नानक तिनकै सद कुर्बान। पैरों महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखै मिथ्या रसना नित उठ पाखै। चक्र बनाए करै पाखंड चुर चुर पचै जैसे त्रय रंड। हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त ना पाईए। साची दरगह साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने। लीपे थाए ना सोच हर मानै।

तिस जान नहीं भंग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को रखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे निंदक को

जियो पिंड तन तिस की रास, सोई मेरा स्वामी करनै हार, कोट बार जाई बलिहार, साधु तूर पनीत करी, मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाऊ, जाकै ग्रह मह सगल निदान, जाकी सेवा पाई है मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव

कै मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को

अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दायाया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हम कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, लै पाती पांदे कह आया, नाम बिना न पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवित ना पढ़ो रही समझाए,

माता नर सिंह का रूप निवार। लक्ष्मी पौ करे ना साके जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया हम मैं तृष्ण बुझाई हर का नाम हृदय मन बसिया मनसा मन है सुमाई हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुर कै शब्द उधारे रहाओ संत जना को जम जोहे ना साके रत्ती।

वढ़ियाई जन्म जन्म के किल विख दुख काट है दुबदा रती ना राई हम मूड मुगद किस बूझ नाही तू आपे देह बुझाई जो तुद पावै सोई करसी अवर न करना जाई जगत अपाए।

नानक तिनके सद बलिहार राम नाम उर तारे भैरो महला पंजवा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

बे परवाहा। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा। नाम बिना मन मुख गवारा, जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन। जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साह। नाम हीन नाही पत वे साह, जिस नाम हृदय सो सब मह जाता। जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। नाम बिना भ्रम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा। जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान। नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया जिस भयो कृपाल। साध संगत मह लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया। कहो नानक तत्तै तत् मलाया, भैरू महला पंजवां। कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल। कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट

बहर किस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

आवत संग न जात संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

जाना, जो हो बोरा तो राम तूरा, लोग मर्म कह जाने मोरा रहाऊ, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन।

जो निर्तन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन

सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई।

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्र सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

किस दे, फूकट कर्म निफल है सेव। जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या घट जाई। कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार। दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले। जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर कौ व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे। माया

जाती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

तेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग

हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिब लाए, सतर साय सलार है जाकी, सवा लाख पै कंबर ताके, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर।

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कति काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोवर कर इशनान सोहं सो जाको है जाप जाको लिप्त ना होए।

मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उच्चरे।

पासक कोट सेज बिस्थर समुंद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अथारह पार कोट कमेर परह पंडार कोटक लक्ष्मी करह श्रृंगार कोटक पाप पुन बहु हिरह इंदर कोट जाके सेवा करह छप्पन कोट जाके प्रतिहार नगरी नगरी खेत अपार।

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना भजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ता को करो शिंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

भगत जना को देहरा फिरे, भैरो नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद

ही पाचहारी राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन तरे रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाखे हर नाखश जिन नखह बिदारे हो सुर नर किए सनाथा कह नाम देहो हम नर हर त्यावे राम अपै पद।

अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करो कह ता लेकर ऊपर धरूं।

भे जब मटकी परी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस पति।

जो कोई पारस परसै दुबदा ना होई रहाओ सो मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक समाए मन का स्वभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाए ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मत सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाउ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर कोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन कोट का

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महा ममारखी चढ़िया सदा बसंत परफड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोबिंद भोलिया हऊ मैं सुरत वसार हऊ मैं मार बिचार मन गुण विच गुण लै सार रहाऊ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुती आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रंग है से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राए जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देओ धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन

करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़े पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कैर मैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे अंतर लोभ मन बिख्या माहे वे निरंजन कैसे पाहे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए, जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराए, सब

न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थिए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उच्चरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दुए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौं मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारी जन नानक उर हर अमृत धारी।

हर मन माहि मर मर जम्मह पी मर जाहि से जन जीवे जिन हर मन माहि साच सुमालह साच सुमाहि रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल ना तमाए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत स्यों घर जाए नानक नाम वडाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोई दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आई। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यों आप चित लाई। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई। बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आई। गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोई। तद ही साच मलावा होई, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचै प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावै सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जीव पावै

मन आई। बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई, मन तन हरिया सतगुर पाई। सफलो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार। ए मन हरिया सहज सुपाई, सच फल लागे सतगुर पाई। रहाउ आपे नेड़ आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर। शाम घणी फूली बन राई, गुरमुख बिबसै सहज सुपाई। अन दिन कीर्तन करह दिन रात, सतगुर गवाई विचों झूठ परांत। परपंच वेख रहया विस्माद, गुरमुख पाईऐ नाम प्रसाद। आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सोई पर होग। वड्डा दाता तिन नात माई, नानक मिलिया शब्द कमाई। बसंत महला तीजा पूरै भाग सचकार कमावे। एको चेतै फिर जोन ना आवे, सफल जन्म इस जग में आया।

मन निर्मल निर्मल सच सोए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक संजान, हर रस चाखै तां शुद्ध होए, नानक नाम रते सच सोए, बसंत महला तीजा, नाम रते कुल्ला का करह उदार, साची बाणी नाम प्यार, मनमुख भूले काहे आए, नामो भूले जन्म गवाए, जीवत मरै मर मरन सुवारै, गुरु कै शब्द साच उर धारै, रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सदगुण।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचे सच सोभा हुए, निज कर वासा पावे सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

बहु अभमान अपनी पत खोए। सेवद भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया। घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजै शब्द।

होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर भेटै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहु मलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाउ मन बसंत हरे सब लोए फलह फुलियह राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखै उर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरै भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगै ना सोए एहो मन जलिया दूजै दोए रहाओ एहो मन धंदै बांधा कार कमाए माया मूठा सदा बिन लाए एहो मन छूटै जां सतगुर भेटै जम काल की फिर आवै ना फेटै एहो मन छूटा गुर लिया छडाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए एह जी जंत फूलह हर चित लाए इन बिद एहो मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हों मैं कड़ै तोए रहाउ सतगुर बाणी शब्द सुनाए एहो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जां आपे लाए मूल लगै तां सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरै भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी बिटोह वारिया पाई गुर शब्द बिटोह बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया होवे एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचों हों मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नो बख्शियो न पाई शब्दे लयन मलाई धूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई सत संगत मेल मलाए आप कराए करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण जोता त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाई गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाउ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर साक्त नर लोभी जान है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए मन हर सिमरहो अंत सदा रख लए हर हर चेत सदा मन मेरे सब आलस दुख पांच प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाउ मनमुख फिर हों मैं मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी सतगुर मिले ता खोजिए।

पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, धन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम अपाव कर थाकी, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया, जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मलावे, नानक शांत हुए मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमसे, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनसे, गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृपसे, जन्म जन्म के किल विक मन भरिया, मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाओ, तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे, हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सुबा हर प्रभ दिन से, जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से तन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धार्यो हर उरसे, हम ढींदे ढीम बहुत अथ पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे, जन नानक गुर पाया हर तूथे, हम किए पतत पवीसे, बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके, नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता, थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे, वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ, जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे, ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे, जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे, हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर भावे सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे, बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाईए, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाईए, गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईए, हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईए रहाउ, कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईए, ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढे, त्यों सतगुर वस्त लहाईए, जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाईए, मधुसूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईए, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईए, बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान पया दुख बिखिया, देह

दुख पानी हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाई हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विट हो घुम वाई जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लाई जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भाई।

आनंद त्यों हर जन जीव है जप गोविंद सिंह रुचै सद भोजन मास रण देख सूरे चित उलास किरपन को अत धन प्यार हर जन को हर हर आधार सर्ब रंग एक रंग माहे सर्ब सुखा सुख हर कै नाई तिसै प्राप्त एहो निदान नानक गुर।

प्राण आधार मन, जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ। जाको खोजह सुर नर देव, मुन जन सेख ना लह भेव। जा की गत मित कही ना जाए, घट घट घट घट रहे आसमाए। जाके भगत आनंद मै, जाके भगत को नाही खै। जाके

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जिसके तारे तरण आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निधान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवां मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

तन प्रभु आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताए, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूरन।

ला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुर मिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रब हो गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा तिल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाऊ, सोग संताप कटे प्रभे आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां

पर फूलता रहे। अब कलु आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा।

धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज से ती घर जाते हर आपे खेल आपे देख हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक करियै गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए बसंत महला नौवा माई मैं धन पायो हर

कहे विद की संपै को गुरमुख पावे बसंत महला नौवां मन कहां बसारियो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परै काम रहाऊ इहो जग तूए का पहार तै साचा मानिया कहे विचार तन दारा संपत गृह कश संग ना चाले समझ ले एक भगत नारायण।

सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग खीला बिगसै तेतो सोग प्रभु शरणागत की नस होग कापड़ पहरस।

गाछुह पुत्री राज कुवार, नाम भणहु सच दूत सवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुब्ध लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बीचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यो फासस काम हार, कड़ बन

दुख कणो मरिय करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाऊ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

बसंत महला पहला दुबदा दुरमत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस

थाप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करन जोग निह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला।

चारी कुंट सलाम करहेंगी, घर घर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड्याई, मेका घड़ी संभाली, बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, हिन पल फिर न रहाई, अनक अपाव जतन कर थाकी, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन, सतगुर मिले ता पूरा पाईए, पज राम नाम निशान रहाउ। एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हो आरसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पए हैं, ज्यो कृष्ण बिदर घर आया, मिले उस दामा पावनी तार, सब किसे आगे दालद पंज।

रहम खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल अपने।

के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आप ही मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यो जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करन तव नह संगाई विख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ ले हो लाई नानक दास प्रभ की शरणाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै।

कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याइन सुन नित से भगत सुहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाई रहाउ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाब कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पांच, वरद पचीसक संग काच, नौ बहियां दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं नकाज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज रहाउ। सात सूत मिल बन जकीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे।

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी का

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए।

अनूब राज तू तिस ते खरे उतावली रहाऊ जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढै परदेस आप तन काजो करे विचार

पाछी किसह पकार है पियो पियो साधु की जो लेहे ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट कहरव दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरा की जैसी तेरी चाल तेरी पूछत ऊपर चमक बाल इस कर्म है।

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाऊ। जो जन दीन भये गुरे आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलहा मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलिया सुख।

हृदय हर हर पानी पंच जना गुर वस गत्याणी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाछ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बूझ ना सकै गवार सो किश करै जे साथ ना चालै इहो साकत का आचार संत जना कै

आनंद जप जगदीश्वरा, मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख जन नानक, हर सिओ मिले हर भगत तोरा, सारंग महला चौथा। जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी, सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ, हर कट कटे कट बसता, हर जल थले हर बसता, हर थान

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी संभव।

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी किन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि तिनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यो चात्रक जल पिए त्रिपतासी सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राखै बिच कल युग अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक भगत वत्सल हर

मित नहीं पाईए, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाऊ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सार महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक हिरह पर दर्श।

रह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओहो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवां, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसानेहा आन अपाओ न को सूजै हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पात अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख तेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे

सब मन तने अर्पण शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरु देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्स पे खागियो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाए गुरु एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहयो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानंद सारंग महला पंजवा अब मोहे राम भरोसो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवै तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

आय सारंग महल्ला पंजवा ओए सुख का सियो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रव दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किश कही है तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस सियों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार है गिरयो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर भार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवां अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाऊ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजे नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सारंग महला पंजवां आन दिन राम के

अंध ममता गुर कृपा ते छूटे। तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा, पूर रहे ओ सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा। सारंग महला पंजवां, बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई, अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी। जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे, वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा। ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत, ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत। दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला, तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी। मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उधरन। सारंग महला पंजवा, गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो, भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ। संतह चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत धरे हाथा, साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

है अघावन पान को। अकाल मूर्त है साध संतन की, था हरने की ध्यान को। वाणी मंत्र महापुरखन की, मन है उतारन मान को। खोज लहियो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को। सारंग महला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाय। रोग सोग तेरे मिट है सगल अग, निमख ही है हर नाम त्याई। रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई, साधु सरनी जाए पाए। जो होए कृपाल दीन दुख भंजन, जमते होए धर्म राय। एक सबिन नाही को दूजा, आनना बियो लवे लाए। मात पिता पाई नानक को, सुख दाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा, हर जन सगल उधारी संग के। पये पनीत पवित्र मन, जन्म जन्म के दुख हरे रहाउ। मार्ग चले तिन्नी सुख पाया, जिन स्यो गोष्ट से तरे। बूढ़त कोर अंध कूप में है, ते साधु संग पार परे। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जोरे। तिनकी धूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे। सार महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याय। एक पलख सुख साध समागम, कोट बैकुंठ है पाए। रहाउ दलाब दे जप होत पनीता, जम की त्रास निवारे। महा पतत के पातक उतर है, हर नामा उरतार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ता का जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाईए वड भागी।

मान करो अब मान बोलो, भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ। निकट सुनो अर पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया। एक निमख जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बरिया, साध संगत की पीर जो पाई, तौ नानक हर संग मिरिया। सारंग महला पंजवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहिया, दे नाओ बलिहारी रहाओ। चहो बिस फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मूख गरुड़ारी, हाथ दे राखियो कर अपना, जो जल कमला अलपारी। हो नाही किस मैं क्या हुसा, सब तुम ही कल तारी। नानक भाग परयो हर पाछे, राख संत सदकारी। सारंग महला पंजवा, अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते, कर्म कारण समरथ स्वामी, हर एकस ते मेरी गाते रहाओ। देखे नाना रूप बहुरंगा, अन नाही तुम भांते, देहे आधार सर्व को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते। भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो, तौ गुर मिल चरण पराते। कहो नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बेहानी राते। सारंग महला पंजवा, अब मोहे लभ दियो है हर टेका, गुर दयाल पये सुखदाई, अंधलै मानक देखा रहाओ। काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया, बुद्ध बिगास विवेका, ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है, सेवक ठाकुर पये एका। जहते उठियो तह ही आयो, सब ही एकै एका, नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई, प्राण पति हर समका। सारंग महला पंजवा, मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै, पेखायो सर्ब थान देश, प्रिय रोम ना समसर लागै। रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन, तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै, हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै, जो अल कमला लो भांगै। गुण निधान मन मोहन लालन, सुखदाई सर्वांगै, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो, मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुग्र सुजाना, सगल जोग अर ज्ञान ध्यान, एक निमख ना कीमत जाना। तुम ही नायक तुम्हे शत्रपत, तुम पूर रहे भगवाना। पामु दान संत सेवा हर, नानक सद कुर्बाना। सार महला पंजवा, मेरा मन चीत आए प्रिय रंगा। विसरे ओ तंद बंद माया को, रजन सबाई जंगा रहाओ। हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बस कर दीना, भोगो भोग न संगा। निरपौ भय नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवण हो पूरे, देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ। छूटर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुड़ सुजानी। जे घर में बैसन नहीं पावत, सो थान मिलियो बासानी। उनके बास आयो भगत बचन, जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ। बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन में हर रस कूटा। सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यों जल मीना। रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते। कोट ब्रह्मांड उधार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती। निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारग महला।

ए दुख सहामा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्ब प्रित पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थो हं सारंग महला पंजवा नैन हूं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्वथान कट बीठा पयो प्रापत अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा तोह नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमक बचन प्रभ हियर बसेओ

चतुर अनूप बधाते तिस स्यो रुच नहीं राई मोहन स्यो बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यो बन आई सगल निदान करै मह पाई कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद छिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहा गुण गाई रहा खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई व्रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आस न अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याईए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरणी पाईए किसह त्याग मनुख जे सेवहु तो लाज लोन होए जाईए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाईए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताईए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ

सूझै प्रभ बिन कहो को किस पह जासी ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर सब किश तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन अनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यों जान है त्यों पारे रहाल जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सूख सघारे तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारे नाम न ना बिसरे तब जीवन पाइए बिनती नानक एह सारे सारंग महला पंजवा मन ते पै पहो दूर परायो लाल ब्याल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाव गुर बचनात कमात कृपाते बहुर न कतहु तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप करावन आपे कहो नानक आप आपायो सार महला पंजवा अमृत नाम मन है आधारू जिन दिया तिस कह कुर्बान गुरपूरे नमस्कारु रहाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारू आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन निरंकारु एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंडू कारु आदमा बेअंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारू सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारी कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारी सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक

रखा किन्ही बाप महतारी सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल जान रहाओ मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्ज्यो आन जंजारी रहाओ देव सचार के दी सह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी कर्ण करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन ना थोरी पूजा चक्र बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंधकूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारंग महला पंजवा।

मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइये वड भागी नानक संतन कह कुर्बान। सारू महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो। संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो।

समाए आनंद आनंद गुण गाया बाहां पकर कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया कहो नानक गुरबंधन काटे बिचरत आन मलाया सारन महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चरहो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मन हो साचा एह सुआओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यों लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपयाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कश करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाइय अहनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाहे सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाइय कर लै आवलाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जाद वर्ण ना साखो नानक महिमा देख रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराद हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरी,

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आपे है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा, सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड़ भागी। एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहा, मन बच क्रम अराधे हर हर साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया, कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी, सारंग महल।

पंजवां जाते साधु शरण गही शांत सहज मन भयो परगासा बिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देहो अपना बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो ज्योति ज्योत समही सारन महला पंजवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिव लाओ साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ सारन महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी माया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाइये सुख विश्राम सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी सारी महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ता को जा का अंत ना पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम निवलाई संत संग बन आई जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिय हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ कहत सुनत किश शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत भेखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा सार महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दगद होहे।

कै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरे सरन पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ। बलबंच करै ना जानै लाभ है सो तूरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग असार्थ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला राम राम रस खीवन। ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन।

काल जब जम आए संघारै प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवां मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवां हर के नामहीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार न लागै तां को ज्यो गागर जल खोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिनयान न होरी सारंग महला पंजवां चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाओ बिन

को बल होए, सगल मनोरथ पूर्णता हुके, दुख ना व्यापै कोई रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का, सुन जीवा तिस सोए, उद्म करो दर्शन पेखन कहो, कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो, दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को, चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा, जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले, बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तो

साध संगत कै बल बल जाई बहुड़ न जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल भी सह शार रहाओ ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नासी।

काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति हित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण कौ राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूठ पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछतावह कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देवह मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाक सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहो बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार

चरण कमल सरनाए नानक साध सदा बलिहार सारंग महला पंजवा। रे पापी तै कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट कर।

पूरन हर रस रपियो खमारु रहाओ निर्मल पय उजल जस गावत बहोर न होत कारु चरण कमल सियो डोरी राखी भेटियो पुरख अपारु कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारु नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारु सारी महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपटाहे रहाओ नाम बसार चलह अनमार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत न आवे गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहे गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर न आवह जाहे सारंग महला पंजवां हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भय खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीतिया बहुर न जुए हार आठ पहर कब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवां पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागै ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

परवार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चल नीमत राई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीते।

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक बिन हो आन ना जानो द्वितीया भाव सब लूह रहा। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिख्या के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलो सुखदाता बिनसी हूं मैं हूह। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूह। सारंग महला पंजवां।

तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्बरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिया हर संग संग खचिया जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवन सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण शरण परन साधु आन वान बिसारे हर चरण प्रीत नीत नीत पाम नाम महापनीत सेवक भय दूर करन कलमल दुख जारे कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार पूत नानक तत बीचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपताही या यग मह को रहन ना पावे।

सह ज्यो बादर की शाही ताज अवमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवां कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ इह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

रखिया ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई। नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा। कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी। अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी। अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला। मन रतना अमृते नेह केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी। साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा। शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदकाई। एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया। सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई। नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई। सारंग महला तीजा अष्टपदियां कर पहला। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई। हर बिन अवर ना जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ। शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई। हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहे आसमाई। भगता का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बढ़ाई। निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई। मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथै कहानी। गुरमत निश्चल हर मन वस्या अमृत साची बानी। मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई। सतगुर मिल रही है सद अपने जिन हर से ती लिवलाई। मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई। हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई। शब्द विचार सदा रंग राती हम मैं तृष्णा मारी। अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी। सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणी। दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी। आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी। नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी। सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा। जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ। कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया। हर बिन अवर ना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया। प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई। शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई। रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई। राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई। पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी। गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी। आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया। सतगुर सेव सदा सुख पाइय
जिन विच्चों आप गुआया साचा शब्द सहज तुन उपजै मन साचा लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाण है शब्द मरे ता सब किस सूजै अन दिन एको जान जिसनो नदर करे सोई जन बूजै होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर लै जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया बहु विध कर्म करह पाए दूजे बिन शब्द बौरानिया हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजे परम पत खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ ना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो हुए सखाई सच्चा सच दाता कर्म विधाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझै

पूजै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूजै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै। नानक से जर थाए पए हैं,

सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाओ राणा राओ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे नीर तरन कर राखे एकत कोई ना किसे ही संगे काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख बेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल सारंग संत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आनना दिया कोथिया हर रंगी इक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता
नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देऊं कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिल कर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसै संग ना कछु हो जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो संदेसा प्रभ जियो कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया।

धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी योग ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवै नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

पौड़ी गुरमुख चल तर चायन गुण प्रगति आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रहा लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त संभाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतिया के बाप केतिया के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाती क्या हुन हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जमदर बद्दे मारी है परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाईए गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सियों जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाही है करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाही है जिन कीता आकार दाता सो सलाही है जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सतगुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिवलाई सलोक महला दूजा किस स्यो कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो परवान चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार जो तिस पावे नानका साई भली कार जिन्ना चीरी चलना।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापे रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशां ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

की गृही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

तीर्थ ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सब

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

हर पाया गुर प्रसादी घट चानना अनेर गवाया लोहा पारस भेटी है कंचन हुए आया नानक सतगुर मिले है ना उपाई है मिल नाम ते आया जिन कै पोतै पुन है तिन्नी दर्शन पाया। सलोक महला पहला त्रिग तिन्ना का जीविया जे लिख लिख वे कहना खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़े क्या थाउ सच्चे शर्मे बाहरे अगै लह ना दाद अकल एह ना आखिए अकल गवाइए बाद अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान अकली पढ़कै बुझिए अकली की चैदान नानक आखे राहु एहो होर गल्ला शैतान। महला दूजा जैसा करे कहावे तैसा ऐसी बनी जरूरत होवे लिंग चिंग नह होवे ऐसी कहिए सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहिए मूरत। पौड़ी सतगुरे अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिस प्राप्त सो लह गुर शब्दी मिलिया सतगुर कै भाण जो चलै हर सेती रलिया जम काल जोहे ना सकई कत चानन बलिया नानक बख्श मलायन फिर गर्भ ना गलिया। सलोक महला पहला सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत तोती सुरत चौंका तिलक करनी होए पाओ भोजन नानका विरला ता कोई कोए। महला तीजा नौमी नेम सच जे करे काम क्रोध तृष्णा उच्चर दसवीं दसे द्वार जे ठाके एकादशी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत कर राखे तो नानक मन माने ऐसा वर्त रही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी पूपतरा जे रंग राय संच है बिख माया कर कर हेत बधाए दे पर दर्भ चुराया पुत्र कलत्र ना वसह बहु प्रीत लगाया वेख दिया ही माया तो गई पछतह पछताया जम दर बदे मारी है नानक हर पाया। सलोक महला पहला ज्ञान विहूणा गावे गीत भुखे मुला घरे मसीत मखट्टू होए कै कन पड़ाए अकर करे होर जात गुआए।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोए न साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़ गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन हूं मैं विचो मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजै, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजै। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्म आई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न विसरै झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्थर जग सोई, हिरदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाऊ कर निज महली वासा, ओए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हौ मैं बहुत अहंकार, शब्दै साध ना आवई नाम ना लगै प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखै उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावै, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मै वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहे सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दरवाजे दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जी करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटियै नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थीए नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिए
आवन जाना दोए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखिया सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजिक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ऊना परख ना आवई अड ना पल्लै पाए। जे आप परख ना आवई तां पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए तां वत लहै नौ नित पल्लै पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिन की बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै बिकसै मोहि माया। देश परदेश धन चुराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लय मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम सुमाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है, जिसह हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह गुठा शहबर लाए, सब धरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए, हर तसै त्याव संत जन हो, जो अंते लए छदाए। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया, तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया। हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोए ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए, गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिव लाए। महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप हौ मैं मेरी, बहु कर्म कमावै है लोभ मोहे व्यापे, हौ मैं कदे ना चूकै फेरी। नानक आप कराए करता, जोत सपावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार, गुर पूरै मेलाया प्रभ देवन हार। भाग पूरा तिन जागया, जपया निरंकार, साधु संगत लग्या तरिया संसार। नानक सिफत सलाह कर।

बात राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी रहाओ। हस्तु जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हस्त।

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

चार गऊ बास कौ संचय खीर गला बांध दोहे ले अहीर माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे अत संचय समझे नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै

निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ मेरी बांदी भगत छिडावै।

निफल पई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बेमुखन को

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस साबे अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख पय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यों काज न कछुऐ सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

उस्ताद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागू सब पन का रहाऊ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांचो हो सब जन का कह कभी।

पुर तारा मलार महला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख वगासी तौ धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

प्रकार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाईए हर मेले मेलन हार मलार महला पहला घर दूजा।

ठहरै सोय। मलार महला पहला दुख वे छोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग ल

तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट मह सास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

सब श्याम रत परम दै दिसह थाम देहे ना नाऊ ना हुए जात उतै देहो ऐथै सब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावै सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निधान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला।

आसन बंद नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पलाय कर कर करता आपे वेख जित पावे तित लाए सेवक को एहा

थाने ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख।

बुद्ध बदा तैसा एहो संसारा जिस ते होआ तिसै समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हूं मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौं मैं कर्म कमाए साहिब भावे सो थीऐ पयै किरत फराए सतगुर भेटै मन मर रहै हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाए चौथै पद वासा होया सच्चै रहै समाए मेरा हर प्रभ अगमे अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझिऐ शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलै शांति उपजै अन दिन नाम लै मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख।

उठावह पार रहाव माया ममता करतै लाई एहो हुक्म कार श्रिष्ट उपाई गुर प्रसादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो त्यहा गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम बखाने सतगुर की ओहो दीखिया ले सतगुर आगे शीस तरे सदा अलग रहे निर्भ

नानक कवन बिद करे क्या कोई सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा ब्रह्म ब्रह्म जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदले जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हम मैं ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेव है आप गवाए हों तिन जन के सद लागो पाए हों जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा रस मीठा हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाउ माया मोह अज्ञान गुवार मनमुख मोहे मुग्द गुवार अन दिन धंधा करत विहाय मरमर जमह मिलै सजाए गुरमुख राम नाम लिव लाई कूड़ै लालच ना लपटाई जो किछ होवै सहज सुभाय हर रस पीवै रसन रसाई।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाय सत संगत की धूर परी उड नेतनी सब दुरमत मैल गवाई रहाव जाहर नवी तपै पगीरथयानी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चरावत गाऊ मिला।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तौ मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्त

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूज है, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू तरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंग है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते। राग

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

ओ नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निदान नानक मन वसिया बहुड़े दुख ना थिया मलार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत भयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन भय।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाऊ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु तहाया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लेव लाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां, बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाउ। जिनको प्यास

जगदीश्वर देखत सदा हजूरे नानक रब रहियो सब अंतर सर्ब रहिया पर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मधे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाऊ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग ना जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनू कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानू।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यु सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाउ गुर के चरण विटोह बल जाउ गुर के गुण अन दिन नित गाउ गुर की धूड़ करो इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना होए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

पाई मलार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रभ आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुखदा।

तुध पानी, नानक तिनकै सद कुरबानी। मलार महला पंजवां, परमेश्वर होआ दयाल, मेघ वरसै अमृत धार, सगले जी जंत तृप्तासी, कारज आए पूरे रासी, सदा सदा मन नाम संभाल। गुरपुरे की सेवा पाया, एतै उतै निबह नाल रहाउ, दुख पन्ना पै

राखे सब जंत, गुण गावहु नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुरपार ब्रह्म परमेश्वर।

नह दुख सा कहलाहि। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहि। मलार महला पंजवा प्रिय की सोब सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विद रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जा कै भावनी नीकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारी। रहाउ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारी। विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही एक तू ही। भगत टेक तुहारी जन नानक सरण द्वारी। मलार महला पंजवा बरस सरसिया गया होहे आनंद सगल भाग। रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग। कन घोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो मिल संत नानक।

गुण गावत सुख चैन रहाउ। हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मग ना चालन हार। जित कर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग

गुर शब्द संयापे एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार।

हृदय साचा शब्द सुमाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखे उर तार, से दुख आगे जे भोग बलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावे साचे। मलार महला तीजा, अष्टपदियां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुए ता सतगुर पाईए, बिन कर्म पाया ना जाए, सतगुर मिले कंचन।

अचार करे विवेक बुद्ध पाई पुरख है पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई है कर्मी पल्ले पाई सतगुर विण किने ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे बीचार बिन नावे जम डांड सह मर जन्मे वारु वार सतगुर भेटे मुक्त।

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने भाणे सेठे उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल परगास, तित काठ नामै नाम निवास, हौ मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजै ना सुख होए, कह कह कहण आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुर मन पाए, अन दिन नाम रहे लिव लाए, सद ही नाम वेखह हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

पतत पावन भगत वच्छल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्स प्यास हर जियो आप लेहो सुम्हारी हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है भिन्न आन ना जानिए गह पुजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया सच्चे तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सबाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढोले बाह भोला वैद ना जानई करक कलेजे माही महला दूजा वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै सोमाणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघ हाथ किश नाही जिन इहो मेघ पठाया।

करी सब कर्ण पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कह कुदरत करे विचार मन

नित त्याई है सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा कलमल होई।

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आए पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलया जाई आपे जोड़ विछोड़े।

जो हर चरणी रहे लिवलाई, ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई, से सुखिए सदा सोहणे जिन विचों आप गवाई, तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाई। सलोक महला तीजा, नानक सो सलाही है जिस वस सब किछ होए, तिसै सरे विहो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोई, गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना हो गई।

वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नजरी आया, हर आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए, बिन तोले पाया ना जाय, गुर कै शब्द विचारिय, गुण मह रह समाय। अपना आप आप तोलसी, आपे मिले मलाई, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाय। हौ बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाय, जगत मुस्से अमृत लुटिया, मनमुख बूझ ना पाई। विण नावे नाल ना चलसी, जासी जन्म गवाई, गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया, दूतां का किसना वसाई। सलोक महला तीजा, बबीहा ना बिललाए, ना तरसाए एहो मन, खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगहा हुए खुआर। जुआ जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार। जिस बख्शे सोह पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवां रात ना विहावी।

गुर कै सहज सुपाई मेघ वर्ष दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई सुख वसया मन आई नानक सो सलाह।